वन्याय वन्याय च कक्ष्याय कक्ष्याय च वन्याय वन्याय च कक्ष्याय चकक्ष्याय कक्ष्याय च चकक्ष्याय च चकक्ष्याय च चकक्ष्याय च कक्ष्याय च चकक्ष्याय कक्ष्याय